0: क्या बात है जी, बड़ा शानदार गीत सुरजीत खान दे वालों यह गाया होया। तो उस तो बाद हुण चलदे आ साडे नाल लाइन दे उपर, एक बार फिर जुड़ चुके ने सारांश जी फ्रॉम यूनी ग्लोबल एडवाइजरी तो। सारांश जी वेलकम।
1: फिर सत श्री अकाल जी। एंड देन लाइक सिर्फ यही वीक रह गया है, सिर्फ टेक्निकली दो दिन रह गए हैं, मंडे एंड ट्यूजडे। आपने अगर अभी तक स्किल डेवलपमेंट के लिए फंडिंग अप्लाई नहीं करा है तो आप बहुत चीज मिस कर रहे हैं। 30,000 to 100,000 की फंडिंग गवर्नमेंट आपको आपके खाते में दे रही है, जिसका मेजर पोर्शन तो ग्रांट्स है। आसान से कोर्सेज करें, फुली ऑनलाइन, घर पे घर के कंफर्ट से करें। नो एज लिमिट, नो क्रेडिट चेक, एग्जामिनेशन नहीं है, फुली ऑनलाइन है। और लाइक आसान सी असाइनमेंट्स हैं, तो क्रेडिट चेक इसके अंदर नहीं होता, फंडिंग आपके खाते में आती है, हमारे खाते में नहीं आती। कोई चाबी कोई मीठी बातें नहीं है इसके अंदर। 8 साल से बहुतों को असिस्ट कर चुके हैं, प्रॉपर ऑफिस है, 8 एम्प्लॉइज आपके लिए काम कर रहे हैं, हर टेरिटरी पे ऑफिस है। आप मंडे आ सकते हैं, फैमिली ऑफ 4 को अप टू 80,000 की फंडिंग बन जाती है। हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, आसान से कोर्स करते हैं, जिसमें से 40,000 तो नॉन रिफंडेबल टैक्स फ्री ग्रांट्स है आज की डेट में। जो रेस्ट पोर्शन है $40,000, 0% पे ऑप्शनल लोन। जितना फैमिली साइज ज्यादा, पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन है, फैमिली साइज ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, इनकम कम कम कम है आपकी नोटिस ऑफ असेसमेंट पे, सच है। सेल्फ एम्प्लॉयड उबर ड्राइवर ट्रक ड्राइवर है, अच्छा बेनिफिट है जी, कोई चाबी नहीं है इसके अंदर। और हमारी फीस काम होने के बाद $199 या $499 है। हमारी नजर हमारी गुल्लक पे, आपकी मोटी फंडिंग पे नहीं है, कोई लालच नहीं है हमारे अंदर। तो कॉल करें, ऑफिस आए, ये कोई जुआ नहीं है कि पैसे आ सकते हैं, ट्रेडिंग नहीं है ये, या ऐसा भी नहीं कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है कि मरने के बाद पैसे मिलेंगे। अब आज कोर्स स्टार्ट करते हैं, 30 to 90 days में आपके खाते में पैसे आ जाते हैं गवर्नमेंट से डायरेक्ट। ऑफिस आए, नंबर नोट करें, कॉल करें, 437-264-31-75, 437-264-31-75। उन्हें कॉल करो, एस्टिमेट लो, 437-264-3175, 437-264-31-75। आपकी गवर्नमेंट जब लाइक $60 billion गवर्नमेंट का डेफिसिट है लास्ट ईयर का, $30 billion तो यूक्रेन को दे दिया, $2 billion आप पे लगा रही है एजुकेशन फंडिंग में, तो कोई चाबी नहीं है इसके अंदर। थोड़ा सा आपको गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है, इसको लें, इस्तेमाल करें, क्योंकि ग्रांट्स बंद होने वाले हैं। 437-264-31-75, 437-264-3175।
0: क्या बात है, 437-264-31-75, 437-264-3175, 437-264-3175। ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 218 ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੁਲੇਵਰਡ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਡੈਰੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ। ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ।
1: ਥੈਂਕ ਯੂ।
0: ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਰਗੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਓਰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ GNE ਮੋਰਗੇਜਿਸ ਦੇ ਮਯੰਕ ਪਟਨਾਗਰ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 647-702-2023, 647-702-2023, 647-702-2023। ਤੇ ਸੂਟ ਲਹਿੰਗੇ ਪਲਾਜ਼ੋ ਪਜਾਮੀ ਲੌਂਗ ਡਰੈਸਿਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਅਗਰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵੇਅਰ ਕੱਪੜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬੁਟੀਕ ਦਾ ਟਿਕਟੌਕ ਹੈਂਡਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, SUKH.designer.boutique, ਸੁੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬੁਟੀਕ। ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਰੈਸਿਸ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ 647-203-3365, 3365। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰਬ ਰੇਡੀਓ 647-704-5454 ਤੇ 647-770-6454। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ, ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

0: माया कमोनी दिन की जंट बोली पाइया कुर्बान कीता इस दिन मोह मिठा लाया कह नानक माया पाया।
1: रोजी एंड विलियम्स पार्कवे में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5555 कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
2: ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿੰਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ।

0: ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਮਾਨ ਦੇ ਆਗਮ
1: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रैम्पटन टेलीफोन 905-799-9400।

भारत घूरते पाया पत्ता की चाल निराली चाला निराली पत्ता तेरी दिख मार चलना लाभ लो अहंकार ताज तृष्णा बहुत नहीं बोलना खनियो तिखी वालों ने किए तुम्हार जाना गुरु प्रसाद जी आप तजार वासना समानी कह नानक चाल पत्ता जुग हो जो निराली ज्यो तू चला है तिव चले स्वामी और क्या जाना गुर तेरे जीव तू चला है तिव चला जिन्ना मार्ग पावे कर कृपा जिन्ना मिलाए से हर सदा ध्यावे जिसनों कथा सुनाए अपने।

नमस्ते श्री कुल देवी कुल आराध्या कुलेश्वरी कुल संरक्षणी माता कौलिक ज्ञान प्रकाशिनी वंदे श्री कुल पूजया कुलाम्बा कुल रक्षिणी वेद माता जगन माता लोक माता हितैषिणी आदि शक्ति समुद्भूता ग्राही संपूर्ण जगत विश्व बंध्यां महाघोरां त्राहि मां शरणागतं त्रैलोक्य हृदयं शोभे देवी त्वं परमेश्वरी भक्तानुग्रहकारिणी त्वं कुलदेवी नमोस्तुते महादेव प्रियंकारी बालानां हितकारिणी कुलवृद्धि करी माता त्राहि मां शरणागतं चिदग्रीमण्डल सम्भूता राज्यवैभवकारिणी प्रकटीतां सुरेशानी वन्दे त्वां राजगौरवं त्वदीये कुले जातः त्वामेव शरणं गतः त्वात्मत्सलोऽहं आद्ये त्वं रक्ष रक्षाधुना पुत्रं देहि धनं देहि साम्राज्यं प्रदेहि मे सर्वदा अस्माकं कुले भूयाते मंगलानुशासनं कुलाष्टकमिदं पुण्यं नित्यं यः सुकृति पठेत् तस्य वृद्धि कुले जातः प्रसन्ना परमेश्वरी कुलदेवी स्तोत्रमिदं सुपुण्यं ललितं तथा अर्पयामि भवद्भक्त्या त्राहि मां शिवगेहिनी श्री कुलदेवी स्तोत्रम् श्री कुलदेवी।

समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 हर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असीं लैके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल G26 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन क्रैम्पटन, 1850 एल्गिन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-11।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारिया आइटमा डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशन तो सर्व करते ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1135
1: जी हाँ। तो आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साई राम, या अली मदद। और बहुत ही बढ़िया से ये मौसम है आपके लिए। तो अभी बरसात के भी थोड़े आसार हैं, पर बरसात के जो थोड़े से आसार हैं वो थोड़ा आपको रिलीफ देने के लिए है। गर्मी ज्यादा होती है तो फिर बीच में आपको थोड़ा ब्रेक मिलनी चाहिए, थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए। तो छतरी तो जरूर होनी चाहिए, जब अगस्त का महीना भी, जुलाई का महीना भी खत्म होने वाला, 7 महीने साल के निकल गए हैं। कैन यू इमेजिन, टाइम ऐसे हाथ से सरकता जा रहा है। तो आइए प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं। अगर आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि मास्टर कोलिजन रिपो आपके लिए बहुत बढ़िया आपके लिए सर्विसेज देते हैं, बहुत सालों का तजर्बा है। तो लंदन में वो रोड पे उनकी लोकेशन है, आपको किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो आप मास्टर कोलिजन डिपो में जाइए और उनकी सेवाएं लीजिए। अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर लेना चाहते हो, बढ़िया टीवी लेना चाहते हो, किचन की गैजेट्स आपको बढ़िया वाली चाहिए और आउटडोर फर्नीचर चाहिए, बारबेक्यू चाहिए, तो ये सारा सामान आपके लिए मिलता है। कहाँ मिलता है? जी हाँ, तो ये सारा सामान टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटरमॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर सकते हैं। आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कीजिए, अपने ऑर्डर बुक कीजिए। अगर आपने राखी पे अपनी बहन को बढ़िया सा गिफ्ट देना है, टीवी बढ़िया सा देना है, तो आप अभी से बुकिंग कर लीजिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अगर आपने मूव होना है तो HK मूवर्स आपको बहुत बढ़िया सर्विसेज देते हैं और उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, आपको बड़ी बढ़िया सर्विसेज देंगे और आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाएंगे। तो आप कॉल कर लीजिए, ट्रक बुक कर लीजिए मूविंग के लिए 416-524-4 पर आप कॉल कर सकते हैं HK मूवर्स। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको खाना ऑर्डर करना है, मिठाइयाँ ऑर्डर करनी है या फिर लाइव कुकिंग करवानी है तो न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए मौजूद है ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे। तो और जानकारी के लिए 905-814-1700 पर कॉल कर लीजिए, 9058-141-730 पे कॉल कर सकते हैं। तो आइए अब आपको एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं कटी पतंग फिल्म से। Let's go to Kishore Kumar ka gaya hua lata ji ka gaya।

तोड़ेंगे बदाम डोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। चाह दीगे चाह दीगे तेरी सुनरिया, चाह दीगे रे चोली, खेलेंगे हम होली।

जमाना क्या करेगा जमाना ओ तुम हो कितनी बेटी आ जाएंगे बदन हम सोने खेलेंगे हम

0: बिखरेंगे हम होली आज न छोड़ेंगे आज न छोड़ेंगे बस हम होली
1: सर में और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये जो गाने हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो आप जरूर हमें मैसेज कर सकते हो 6477737640। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ जो प्रोग्राम को पसंद करते हैं और हमें मैसेजेस सेंड करते हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो कुछ इस तरह भी हो जाएगी। तो पहले आपको बता दें, अगर लंदन में रहते हो, आसपास के इलाके में रहते हैं, आपको बड़ी बढ़िया सेवाएं देंगे मास्टर कोलिजन डिपो वाले, तो कोर रोड में मौजूद है लंदन में। अगर आपने किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कोलिजन डिपो .com पे जाकर आप और जानकारी ले सकते हैं। तो आपको बहुत बढ़िया सर्विसेज देंगे। अब अगर हमने मूव होना है तो HK मूवर्स आपके लिए होने के लिए किस्मत को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आज ही बुक कर लीजिए 416-524-4164-1652-46704। अपने घर में फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर लेके आना चाहते हो, बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हो, बढ़िया प्राइस में लेके आना चाहते हो, तो ये सारा कुछ आपको मिलता है टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है। दूसरी लोकेशन इनकी ग्वाल्फ में है। और आप अगर बढ़िया टीवी लेना चाहते हो, किचन की गैजेट्स लेटेस्ट चाहिए, तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स से ही आपको ये सारा सामान मिलने वाला है। तो आप अपने ऑर्डर बुक करिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पे कॉल कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत। आपको तो याद होगा कि वहाँ पे वृक्षों के ऊपर वो जो बड़ी सी रस्सी होती है उसको बांध करके सभी झूले डालते हैं और फिर सभी बार बार झूलते हैं, तो लड़कियाँ सभी इकट्ठी होती हैं तो झूला झूलती हैं, और यही तियां का मेला भी यहीं पे उसी का सभी सहेलियों के पास इकट्ठी होती हैं तो अपना फन करती हैं। तो आइए, अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मूविंग करनी है तो HK मूवर्स को कॉल कीजिएगा, आपके लिए बहुत बढ़िया सर्विसेज 416-524-604 416-524-6704। आप किचनर वाटरलू गल्फ में घर खरीदना बेचना चाहते हो तो वो नसीब खंड को कॉल कीजिए, बहुत बढ़िया सर्विस देंगे, हाईली प्रोफेशनल। तो 519-542-1260 519-546-1260।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। अब आपके लिए बहुत बढ़िया सा गीत मैंने चुना है। तो पहले आपको बता दें कि अगर आप नए फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, बढ़िया गैजेट्स आपको किचन के लिए चाहिए तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है, तो आप अपने उनकी स्पेशल देखो topchoiceelectronics.com। तो फिर अपने ऑर्डर बुक करो 905-749-0045-7999-0045 तक। तो अब आपके लिए गाने है, ये जो गाना आशा भोसले मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ है बहू बेगम फिल्म 1967 से। सो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

में बहुत ही ऐसा स्वागत है, अभिनंदन है। तो अब आपको थोड़े नए वाले गाने में ले चलें, तो क्या ख्याल है? बहुत सारे नए गाने भी हैं। तो अब अगर आपने बुक होना है तो एचके मूवर्स आपकी पूरी मदद करते हैं, तो आप उनको कॉल कीजिए 416-524-4416-524-6724। आपको ट्रक रिपेयर करवानी है तो बेस्ट ट्रक रिपेयर टायर सेंटर 1715 सिस्मट रोड पे मौजूद है। तो वो बहुत बढ़िया आपको सर्विस देते हैं। तो 1715 सिस्मट रोड मिसी सागर में मौजूद है। तो अब अगर आपने इसी तरह के भी ट्रक रिपेयर करवानी है तो आप 905-625-0055 पर कॉल करो, 905-625-0055 पर कॉल कर सकते हैं। तो आपको अगर तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स नया टीवी लेना है, किचन गैजेट है, तो और 905-700-0045 पर कॉल कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू दिस वीडियो।

तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, आई मीन हैव अ वंडरफुल वीक। सो एंजॉय दिस सॉन्ग, नानक नाम चढ़ी कला तेरे पानी स्वर्ग दा पला।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

जिनके मनो से आवाजी शब्द तनेरे कह नानक सच्चे साहब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दिया ए वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द तरो मेरा आधारो बाजी पंच शब्द तिद कर सुभागै कर सुभागै शब्द बाजी कला जित कर धारिया पंच दूत तुदवास कीते काल कंट कुमारिया तुर कर्म पाया तु जिन को से नाम हर कह लागे कह नानक तहस पोआ तित कर अनहद बाजी साची लिवै बिन दे निवाणी दे निवाणी लिवै बाजू करे विचारिया तुदवास समरथ कोई नाय कृपा कर बनवारिया ਇਸ ਨਾਮ ਹੋਰ

0: माया कमोनी दिन की जंट बोली पाइया कुर्बान कीता इस जिनम मिठा लाया कह नानक माया पाया
1: विलियम्स पार्कवे में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज जी हाँ उनकी स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-450-7335 कॉल कीजिए 9054562733 अल्फा ऑप्टिकल योर विजन इज योर बिजनेस
2: ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ।

0: ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਣ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਆਗਮ
1: यहाँ से आपको ठाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलिनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रैम्पटन टेलीफोन 905-799-9400।

अर्थ पूरते पाया भक्तां की चाल निराली चाला निराली भक्तां केरी दिख मार चलना लाभ लो अहंकार ताज तृष्णा बहुत नाही बोलना तनयो तिखी वालो ने की एक मार्ग जाना गुरु प्रसादी जिने आप तजार वासना समानी कह नाम चाल भक्तां जुगो जू निराली ज्यों तू चला है तिव चले स्वामी और क्या जाना गुर तेरे जीव तू चला है तिव चला जिन्ना मार्ग पावे कर कृपा जिन्ना मुलाए से हर सदा ध्यावे जिसनों कथा सुनाए अपनी।

नमस्ते श्री कुल देवी कुलाराध्या कुलेश्वरी कुल संरक्षणी माता कौलिक ज्ञान प्रकाशिनी वंदे श्री कुल पूजया कुलाम्बा कुल रक्षिणी वेद माता जगन माता लोक माता हितैषिणी आदि शक्ति समुद्भूता ग्राही संपूर्ण जगत विश्वबंध्यां महाघोरां त्राही मां शरणागतं त्रैलोक्य हृदयं शोभे देवी त्वं परमेश्वरी भक्तानुग्रहकारिणी त्वं कुलदेवी नमोस्तुते महादेव प्रियंकारी बालानां हितकारिणी कुलवृद्धि करी माता त्राही मां शरणागतं चिदग्रीमंडल संभूता राज्यवैभवकारिणी प्रकटीतां सुरेशानी वंदे त्वां राजगौरवं त्वदीये कुले जातः त्वामेव शरणं गतः त्वात्मत्सलोहं पाद्ये त्वं रक्ष रक्षाधुना पुत्रं देहि धनं देहि साम्राज्यं प्रदेहि मे सर्वदा अस्माकं कुले भूयाते मंगलानुशासनं कुलाष्टकमिदं पुण्यं नित्यं यः सुप्रति पठेत् तस्य वृद्धि कुले जातः प्रसन्ना परमेश्वरी कुलदेवी स्तोत्रमिदं सुपुण्यं ललितं तथा अर्पयामि भवद्भक्त्या त्राहि मां शिवगेहिनी श्री कुलदेवी स्तोत्रम्।

रिलीफ देने के लिए है। गर्मी ज्यादा होती है तो फिर बीच में आपको थोड़ा ब्रेक मिलनी चाहिए, थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए। तो छतरी तो जरूर होनी चाहिए। जब अगस्त का महीना भी, जुलाई का महीना भी खत्म होने वाला, 7 महीने साल के निकल गए हैं, कैन यू इमेजिन टाइम ऐसे हाथ से सरकता जा रहा है। तो आइए प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं। अगर आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि मास्टर कोलिजन रिपु आपके लिए बहुत बढ़िया आपके लिए सर्विसेज देते हैं, बहुत सालों का तजर्बा है, तो लंदन में गोर रोड पे उनकी लोकेशन है। आपको किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो आप मास्टर कोलिजन डिपो में जाइए और उनकी सेवाएं लीजिए। अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर लेना चाहते हो, बढ़िया टीवी लेना चाहते हो, किचन की गैजेट्स आपको बढ़िया वाली चाहिए और आउटडोर फर्नीचर चाहिए, बारबेक्यू चाहिए, तो ये सारा सामान आपके लिए मिलता है। कहाँ मिलता है? जी हाँ, तो ये सारा सामान टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटरमॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्थ में है। तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर सकते हैं। आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 9057900045 पर कॉल कीजिए। 9057990045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कीजिए, अपने ऑर्डर बुक कीजिए। अगर आपने राखी पे अपनी बहन को बढ़िया सा गिफ्ट देना है, टीवी बढ़िया सा देना है, तो आप अभी से बुकिंग कर लीजिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अगर आपने मूव होना है तो HK मूवर्स आपको बहुत बढ़िया सर्विसेज देते हैं और उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, आपको बड़ी बढ़िया सर्विसेज देंगे और आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाएंगे। तो आप कॉल कर लीजिए, ट्रक बुक कर लीजिए मूविंग के लिए 416-524-4 पर आप कॉल कर सकते हैं HK मूवर्स। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको खाना ऑर्डर करना है, मिठाइयाँ ऑर्डर करनी है या फिर लाइव कुकिंग करवानी है, तो न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए मौजूद है ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे। तो और जानकारी के लिए 905-814-1730 पर कॉल कर लीजिए, 9058141730 पे कॉल कर सकते हैं। तो आइए अब आपको एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं कटी पतंग फिल्म से। Let's go to Kishore Kumar ka gaya hua lata ji ka gaya।

लेंगे पतंग चोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। चाहे भीगे चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे हम होली।

क्या करेगा जमाना, ओ तुम हो कितनी आएंगे बन हम होली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली।

0: ने छोड़ेंगे। आज न छोड़ेंगे बस हम
1: सर में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये जो गाने हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो आप जरूर हमें मैसेज कर सकते हो 6477737640। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ जो प्रोग्राम को पसंद करते हैं और हमें मैसेजेस सेंड करते हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो जुड़े करते हैं तो कुछ इस तरह भी हो जाएगी। तो पहले आपको बता दें, अगर लंदन में रहते हो, आसपास के इलाके में रहते हैं, आपको बड़ी बढ़िया सेवाएं देंगे मास्टर कोलिजन डिपो वाले। तो कोर रोड में मौजूद है लंदन में। अगर आपने किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कोलिजन डिपो .com पे जाकर आप और जानकारी ले सकती हैं। तो आपको बहुत बढ़िया सर्विसेज देंगे। अब अगर हमने मूव होना है तो HK मूवर्स आपके लिए होने के लिए किस्मत को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आज ही बुक कर लीजिए 416-524-4416-524-6704। अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर लेके आना चाहते हो, बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हो, बढ़िया प्राइस में लेके आना चाहते हो, तो ये सारा कुछ आपको मिलता है टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है। दूसरी लोकेशन इनकी ग्वाल्फ में है। और आप अगर बढ़िया टीवी लेना चाहते हो, किचन की गैजेट्स लेटेस्ट तो चाहिए, तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स से ही आपको ये सारा सामान मिलने वाला है। तो आप अपने ऑर्डर बुक करिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पे कॉल कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर से साथ।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत। आपको तो याद होगा कि वहाँ पे वृक्षों के ऊपर वो जो बड़ी सी रस्सी होती है उसको बांध करके सभी झूले डालते हैं और फिर सभी बार बार झूलते हैं। तो लड़कियाँ सभी इकट्ठी होती हैं तो झूला झूलती हैं, और यही तीयां का मेला भी यहीं पे उसी का सभी सहेलियों के पास इकट्ठी होती हैं तो अपना फन करती हैं। तो आइए, अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मूविंग करनी है तो HK मूवर्स को कॉल कीजिएगा। आपके लिए बहुत बढ़िया सर्विसेज 416-524-8604, 416-524-6704। आप किचन और वाटरलू गल्फ में घर खरीदना बेचना चाहते हो तो वो नसीब फ्रेंड को कॉल कीजिए। बहुत बढ़िया सर्विस देंगे, हाईली प्रोफेशनल। तो 519-542-1260, 519-542-1260।

0: जी हाँ, तो एक बार फिर सब आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। अब आपके लिए बहुत बढ़िया सा गीत मैंने चुना है। तो पहले आपको बता दें कि अगर आप नए फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, बढ़िया गैजेट्स आपको किचन के लिए चाहिए तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है, तो आप अपने उनकी स्पेशल देखो topchoiceelectronics.com। तो फिर अपने ऑर्डर बुक करो 905-749-0045-7999-0045 तक। तो अब आपके लिए गाने हैं, ये जो गाना आशा भोसले मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ है बहू बेगम फिल्म 1967 से। सो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।
1: इस बार में भी अपना मजा होता है।

बहुत ही ऐसा स्वागत है, अभिनंदन है। तो अब आपको थोड़े नए वाले गाने में ले चलें, क्या ख्याल है? बहुत सारे नए गाने भी हैं। तो अब अगर आपने मूव होना है तो एचके मूवर्स आपकी पूरी मदद करते हैं, तो आप उनको कॉल कीजिए 416-524-8044-16-52-46-704। आपको ट्रक रिपेयर करवानी है तो बेस्ट ट्रक रिपेयर टायर सेंटर 1715 रोड पे मौजूद है। तो वो बहुत बढ़िया आपको सर्विस देते हैं। तो 1715 रोड मिसिसागा में मौजूद है। तो अब अगर आपने किसी तरह के भी ट्रक रिपेयर करवानी है तो आप 905-625-0055 पर कॉल करो, 905-625-0055 पर कॉल कर सकते हैं। तो आपको अगर तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी लेना है, किचन गैजेट है, तो और करिए 905-700-0045 पर कॉल कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटी।

तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, आई मीन हैव अ वंडरफुल वीक। सो एंजॉय दिस सॉन्ग, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी स्वादा पला।

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
2: गार्निशमेंट, पावर ऑफ सेल नोटिस, बैंक वालों पैसे दी मंग, उन्हें ही सानू कॉल करो, फिर तो अनु कोई नहीं कर सकेगा तंग। कर्जा माफ कराओ, 100% मानसिक शांति पाओ, कलेक्शन कॉलों तो छुटकारा, बिना ब्याज निकिया निकिया किश्तां। कॉल करो कनाडा कंज्यूमर क्रेडिट असिस्टेंस 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दंगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दे हो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए, देन सडनली तुसी एक कमर्शियल सुनदे हो।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग हरजिंदर गिल ते छड़ दवो। तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com। Helping you to fulfill your real estate plans.
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप।

0: मेरे रब जी, मेरा बिजनेस नहीं ये चलता। बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं बनती। बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
1: मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? देव तात्रे नू कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला। भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल, फोन कर 416-677-0609 416-677-0609।
2: होल्डर गंडा सिंह रिपोर्टिंग सर। अंग्रेजी की लत तोड़ नहीं लाई।
3: पता की मैं भी सच्ची बहुत दुखी हां। तो
2: बंदा पूछे भी तू शर्मा जे तेनू नहीं आउंदी तू ना बोल।
3: एग्जैक्टली
2: कुत्तियां नू भौंकी जानी अंग्रेजी नाले आउंदी नहीं।
3: पता की गंडा सिंह
2: मेरे मुंह गाला निकल गया बिना गड्डी। फिर मैं कह भी नहीं मानू समझा गंडा सिंह। इत्थे महकां लगियां हुंदियां ते फिर महकां नाल आवाज चली जांदी अगे।
3: माइक
2: ओ मैका।
3: हां जी हां जी। पता है की गंडा सिंह जी, तुसी ही तां हो जेड़े अकलमंद हो, मतलब इत्थे आके मैनूं मिलदे हो।
2: ए तां है,
3: सारा दिन सोचो मेरे नाल किद्दां बैठे।
2: मैं दरअसल अज इस करके आया, मेरे को टाइम है नहीं जानदा। मैनूं इह दस पी डेट की हुंदी है।
3: डेट मतलब की किसे गोरी नाल चल रहे हो?
2: पता कोई नहीं, मैनूं आंदी आई वांट टू गो टू डेट।
3: अच्छा,
2: ते मैं क्या भी यार डेट मतलब हुण मैं कैलेंडर लेके जा बड़िया।
4: मोंट्रियल टोरंटो या वैंकूवर अंदर अपने बिजनेस का संदेश देकर कामयाबी की मंजिल वाल जल्दी ही वध सकते हो। स्पेशल पैकेज का फायदा उठाने लई तुसी साडे हेड ऑफिस नाल संपर्क करो 416-677-0609 416-677-0609।
5: नहीं कर ला चुगलियां तू
3: काका, मसा ही बचिया। मैं ना सो
5: के आ गया, मतलब किड्डी तू खुश हुनी ओदे बेशर्म जिया बंदा ओ।
3: हेलो
5: होर की
3: अकलना बोली, पंजाब पुलिस आओ।
5: पंजाब पुलिस हुंदा सी हुन नहीं हैगा।
3: जिद्दा भी है,
5: जो पंजाब पुलिस हुंदा ना बंदा ओदों को सारे डरदे है।
3: अच्छा,
5: जदों पंजाब पुलिस छड़ दंदा ना फिर ओ आप ही मल्ला चेंज कर लेंदा।
3: भाई साहब पर उने तेरे छड़न लगे ने, नहीं सोचना भी किथे पैंदियां भी।
5: नहीं ओ तां हुन मैं देखूंगा कि हुन ओ पंजाब पुलिस च है नहीं।
3: पहली शर्त ए हुंदी है की जदो उस घर नू कोई खरीदन दे लई आ गया, उन्हां नू उसे वेले ओ घर खाली करना पवेगा, छड्डना पवेगा। दूजी शर्त है की घर जेड़ा ओ इस तरह होना चाहिए जिवें ओहदे विच कोई वी ना रहिंदा होए, मतलब किसी चीज नू कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तीजी चीज है जेड़े कह लो शीशे वगैरा एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए ने। चौथी चीज आ कि बेड जेडे ने इदा होने चाहिए जिवे ओहदे उपर कदी कोई पहला सुत्ता ही ना होए, मतलब बिलकुल नवा लगना चाहिए घर।
5: हाँ नहीं एक मिनट।
3: हाँ
5: ये मतलब उत्थे घर च रहण दे लई सुख आ के सजा आ? चंगे काम दस मेनू।
3: चल ठीक है, बाद च दस।

0: हाँ हरमन कौरी
1: हाँ
0: दस फिर
1: मैं देख तेरी इस गल ना सीरियसली हो लग गई
0: हाँ
1: तू एवे कर जेड़े प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर्स नहीं होंगे
0: प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर
1: हाँ
0: मतलब ये कि भी आपके बच्चे को जब समर कैंप पे जाना है तो क्या आगा चीज चाहिए है फार्मस चाहिए बैग चाहिए दस्ताने चाहिए कोटी ऐसे मेरी गल सुनो ये काम मैं करूंगा तो मतलब बच्चे की मां की करूंगी फिर
1: भाई साहब जब बच्चे की मां नहीं करना तो उन्हें तेनू की करने रखना है
0: यार किद्दां दी मां हो गई जेड़ा अपने बच्चे दा चा नहीं करन दई ते ओ मेरे का ऑर्गेनाइजर लभदी फिरूगी उत्थे
1: हेलो
0: नाले
1: एक मिनट हेलो
0: एक्सक्यूज मी
1: हां
0: जेड़ा ओदा मेन ऑर्गेनाइजर ओ किधर गया
1: केड़ा ऑर्गेनाइजर
0: जिने बच्चा ऑर्गेनाइज कीता पहले
1: एक्सक्यूज मी
0: पापा जी
1: थोड़ा ध्यान ना
0: हो वही मैं कह रहा ना
1: पापा जी किन्ना का काम करदे हुंदे ने दसी जरा मेनू
0: नहीं भावे कुछ भी दे दा ए थोड़ा
1: लेडीज ऑलवेज बच्चे भी देखण काम भी देखण घर भी देखण डॉलर भी देखण सारा कुछ देखण है हेलो
0: मैडम तू ना बीबी दी साइड ना जा मेरे वाले प्रोफेशन ते आ एक प्रोफेशनल प्रोफेशन मैनू चंगा लगा नहीं
1: हेलो
0: नाले मौक दी गल है जे अगले मेरे को काम कराउणगे कल नू भाई साहब मेरी कोई चीज अगले दा जवाक पाड़ दे बाद च अगले पैसे ना देण फिर कौन जिम्मेवार
1: एक्चुअली तेरा सिर जरूर पाड़ सकदा बाकी गल्लां दीआं गल्लां
2: मेरे नब जी मेरा बिजनेस नहीं है चलता बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख ले ने कोई गल नहीं बनती बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो
3: ओए मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं देव तातले नु कॉल कर रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल फोन कर 416-677-0609 416-677-0609